गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा दूरसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा दूरसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।